लोग हैं, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन नहीं है, समझे? डरो मत, कोई डरने की बात नहीं, दोस्त है ये सब। अरे डरने की क्या बात है अरहब के लोगों, डरो मत, ये विलायती सोल्जर है, विलायती सिपाही, गोरा लोग, डरने की कोई बात नहीं है। ऊता नीचे आ जा, कोई बात नहीं डरने की, गोरा लोग है। ऊता नीचे आ जाओ, ऊता डरने की कोई बात नहीं, ला तखब ऊता।